0: श्री बेके को दी ने बेके को दी खानी नरसिंह श्री को बतोरा आता हूँ हिन्या बेतातानी तने के ये वो अगला कहता कहीं ते ने तो को दी ता चुन ते खानी अजुना को आता श्री ने के दी खानी ले बंता हूँ ते ऐंता ऐ खानी का गवर्नमेंट आ के दी ता ऐ का को नाशिनी चुगो चेना तरुटी नी बेता ही ते
1: हाँ ऐंता तीतरे ये तने के निने कोलाई ओने तने खार खोच नीत ई कोलाता ई तने खे कोला ई कुते खात इले ई तात मुलाक एते ई वी ऑलवेज रिमेंबर की दिता ई सी तने खे खानी ते कुछ ना त्यानी ई आई को हेता कुइन एसी ई ये ठेकेरे ते खानी का कुछ ना त्यानी
0: हाँ ऐ खानी पेदारी दिना किने इसे ये नहीं थे कौन ही ती ही किने तखों पेगुना दी वे पेगुन गुड तंदे कबूल है तलसोने तेरे कोई आकाश यूं तले ता सूर्य ता होंगो तेरे जंगल की पेरे जंगल जे ते सोने कोली कागो दिया को दिखने वाला सोने ता इंदा ना हिने से ऐ ना हिने ताने बहे ना ही ते ऐ खाने कोगों को है कोई तंदे ऐ ये चूगा तेरे ने जों ता सिंके हिच ने जों ली पेरा बगुआ आही ते काया जा क्या कोनो खाए को ओं को चिंसे तेरी तना हरो कुंगो इन लाऊं दने ऐंता क्या कोनो ओं सुलाओ नो ले मिल सीतने ये इनके कुआं त्यों द तने ओं हुई नाइन त्यों द तने सों द ए दू को लिखा था तने के सो के तने ए चे ए सों अमां खानी को चे इनके कुआं का दिखे द खानी वाली करी चोले गे द ना ये वो ना हो के तले ला ऐंता ए खानी चु सिनी से का बतोरा ए दू कुत्ते उस ये जाटिंग कों फोर्ट प्रोविडेंस ये मॉन्यूमेंट वाओ ये एमी कोई आईटी है ताज़ों लाइक क्या उन तक उन तक कोजी सुन चोले ता ये कोजी वो करे ते कोटे उन सा केटी तारा फाकुई आकाते हने वो करे ते ये ताज़ों कोली पगाए तंगो जे ये चुली ताऊ जे ए जुआ काते लो में बगुना दिया फे ता तारे कोजी सिं पगाए तंगोली ए यों तने फले चुली ता कुने चागुं तले ता तेरा खाने को लियो सातरे गोजीवा है तो उसे सुने अलिया गुंडे है मिया की तने से एक खूह है उसे दूसरे है से तने से चली जिंदे कुलियों तने तू तो मला केंद्र लिया गुज़ार दा मला केंद्र सिया चली जिया गुज़ार दा ऐसा खाने चुगना दी पंडा खाने चुगना को करे तने सुन कुछ सातरे चुगा सीतना ऐसी स्कूल निरखने तक चौले को नो कोई सुखने
1: तेने खे चना ती खानी गाते आयुने तेने खे तेने खार खो हा खात ई खानी कोला ते ई खानी तेन चना ती गा ये खेरे यो ते ने
0: जोनी新手这里啊，奶奶在那喝过的，当年喝了出来，当年那个新手这里啊，当年去过进地方的我嘞，一个来接到呢，就这地接到呢，这里去呢，那他一年在矿过进的，一年去哈过啥出来，接到呢就这地方过，那他看你过来，从新到我这来出来，一打就到我这得的呢，从送你地地种的。
1: 他才中谁去啊？谁去？送老农还送你不离，小孩看你过来，哎，丢下回来，哎，school啊，听，哎，school啊，听，卡拉发school啊，听，还地卡回来，要往社工的，卡拉发不离，小孩看你过来，人家看你就是打工的，看你在，只等了看你后，给你兄弟，一个人先后给你，二个人那种给丢啊丢了，人家看你过来，看你不光过后在得了在啥出来，等那送了公司，等那丢你。
0: ve，啥才是咱们当地话，听，但是你肯定会说呢。当地话，看你跟我看，阿肯定会说呢。看你屋里，都往这得了的，都往这口口里说。那他看你就口口里说的那种，你本来就认的。就说咱看看你过海，当你跟那滚过，一看，也给看了有的那说啊。哎哎，看你在说的，也就是说的那开心，那心里，心里就在那开心，舒坦，这个我跟那他说。
1: Thank you.